0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहामला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहामला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य

0: கன்னியாகுமரியில் பதிவான அதிகள வெப்பநிலை 36 டிகிரி.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்மணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले आज फिजी में आयोजित एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। साथ ही वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना भी जरूरी है। श्री यादव ने क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में वृद्धि करके इसे 0.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया था, हालांकि 2025 में इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो संदेश में कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर प्रदेश में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती

0: कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से, जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से, छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुंचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
0: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, तेवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
0: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
0: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
0: जी।
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही,
0: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
1: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता
1: जी। विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ

0: स्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हर पल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े

0: कुछ मिल जाता।
1: पेड़ हंसने लगा।
2: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
1: सिमरन ने आंखें झुका ली।
0: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
0: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
3: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और तो और।
0: बस बस, मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
0: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
4: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
5: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया।

0: उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्षगुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
0: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा काम।
0: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पुणे के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
0: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
2: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
3: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
2: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्षगुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्षगुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
4: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
3: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा, इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
4: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
3: क्यों?
4: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
3: हो।
4: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुँचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका।

0: मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
1: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
0: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
1: थैंक यू।
2: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और शक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
3: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
2: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
4: किसने खींची चेन?
5: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
1: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
4: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
1: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
4: आइए आइए, देखते हैं।
1: आइए, हम भी चलते हैं।
4: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
1: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
2: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
1: आइए सर, आइए देख लीजिए।
4: अभी तक तो यहां भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहां पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
4: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
5: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग। मे आई नो योर नेम प्लीज?
1: आई एम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया।
5: The engineer in chief of Mysore state.
0: और रेलवे सचिव भी।
4: नमस्कार सर।
1: जी जी सर, मैं वही हूँ।
5: नमस्कार सर, नमस्कार। We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
2: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
3: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
2: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ

0: इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
1: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
0: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: यानी सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
2: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमयी यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म्ड द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र

0: आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन एआई ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूँ। आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज The unwavering support and encouragement of our fellow citizens have been a source of strength for the Indian Air Force. Desh ki raksha karna hamara kartavya hai aur aap sabhi ka aashirwad hamari sabse badi taakat hai. Ant mein hum samast vayu yodha Bhartiya Vayu Sena achuk abhed evam satik ki avdharna ka smaran karte hue yeh sankalp lete hain ki rashtra ki raksha uski samprabhuta aur akhandta ke liye हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे। जय हिंद।
1: On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, you were listening to a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
2: अभी आप भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी पुदुचेरी முதன்மை அலைவரிசை நேரம் 8:16. தொடர்வது திரையிசை. திரையிசையில் ஒலிக்க வரும் பாடல் பம்பாய் என்ற படத்திற்காக கே எஸ் சித்ரா பாடியது.

0: 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said such transformation is possible when the intent is clear and policies are well defined.
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: Home Minister Amit Shah hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day, addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today. He stated that under Prime Minister Modi's leadership,

0: இதுவரை வானில் பறப்பது போன்ற உணர்வை தூண்டிய பாடல்களை கேட்டது சங்கீத வானிலை நிகழ்ச்சியில். ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி வானொலி நிலைய முதன்மை அலைவரிசை, நேரம் 10 மணி. நேர்கள் கேட்க இருப்பது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பொது சேவையில் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை ஒட்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஒளிப்பதிவு.
1: ஆகாஷ்வாணி ஹே விசேஷ ஸ்ருங்கலா ஜன் சேவா சே தேஷ் சேவா கே 21வே சன்ஸ்கரண மே பிரஸ்துத் ஹே பரிசர்ச்சா ராஷ்ட்ரீய சாமர்த்திய ஔர் சுரக்ஷா மே ஆத்மநிர்பர்தா. இஸ்மே பாக் லே ரஹே ஹே ரக்ஷா விஸ்லேஷக் லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா ஔர் கேந்திரிய ரிசர்வ் புலிஸ் பல் CRPF கே பூர்வ மகா நிரீக்ஷக் MP நதேனியல். कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं. 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं. और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा. आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा. और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जो CRPF के पूर्व IG हैं. लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में.
3: थैंक यू.
2: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं. पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू हैं?
3: तो देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जिस सुधार की आप बात कर रहे हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं. इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स. ये है वो. और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं. आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं. यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion. युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है. टुडे देयर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाब अल मंडब, हॉर्मुज, ब्लैक सी. और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा. सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर. तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से लगभग उस समय से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं. इट इज ट्रांसफॉर्मेशन. और अगर आप जाएं, अभी भी PMO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है. इट्स पब्लिकली अवेलेबल. और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है. इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग. और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट. उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द CDSDMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ.

0: डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल शब्दों में,
0: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए द सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, दे आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया। थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप दो या तीन थिएटर्स बनाए, एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजन, सो पश्चिमी तट की ओर,

0: कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए द सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया. थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप दो या तीन थिएटर्स बनाए, एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजंस, सो पश्चिमी तट की ओर, एक एट द ईस्टर्न होराइजंस या चाइना, वेस्टर्न होराइजंस पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, और एक मैरिटाइम थिएटर, और दो तीन जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर. बट वंस यू से वेस्टर्न होराइजंस, अब उसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इन टू दिस वन थिएटर कमांडर. अब देखिए CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. So it's not army taking its plan, navy taking its plan. It is integrated plan which the CDS takes. Sindoor mein dekhiye kya hua. So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the prime minister. Aur iske piche bhi ek lamba itihas hai, prashthbhumi hai. So that is optimizing all available resources for बेस्ट कॉम्बैट आउटकम्स.
1: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेस में देख रहे हैं.
0: आपने बहुत सही सवाल पूछा. देखिए क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द CDS, यू हैव अपॉइंटेड अ CDS, बट अगर आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949. उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स. तो आपने गल्फ वॉर वन में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी. गल्फ वॉर टू में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16. आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब. सो दोज आर द स्टेप्स. टूडे वी आर इन वॉट वी कॉल कोऑर्डिनेटेड जॉइंटनेस, देन यू हैव टू गो टू इंटीग्रेशन, देन क्रॉस पॉलिनेशन, देन सिविल मिलिट्री फ्यूजन विच इज होल ऑफ गवर्नमेंट. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ. एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, इट हैज पिक्ड अप एन अमेरिकन कॉल्ड ओमार यागी, नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस मटेरियल्स, जिसमें PLA का 30% रिप्रेजेंटेशन. तो एकेडमिया, PLA एंड नोबेल लॉरेट काइंड ऑफ टैलेंट, दैट इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन. तो ये अभी एक लंबा सफर है. CDS पहला पड़ाव था, इंटीग्रेशन थिएटराइजेशन दूसरा पड़ाव होगा. And that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, this is the beginning of that journey. और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ढांचा था
1: जी,
0: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल है. देखिए पहले क्या होता था कि a service chief would go to the रक्षा मंत्री through the defense secretary. So political executive, but the serve soldier could get to him only through the bureaucratic air.
1: The hierarchy had to be.
0: Now it is equals. Defense secretary, CDS. Both. So that the Raksha Mantri gets the best advice. Iska, that is the logic. Aur jaise maine kaha, iske jo ab hum civil military fusion ki or agrasar.
1: Ji.
0: Aur iske meel patthar kya honge? Pratibha, talent. Maine uska ek udharan diya aapka. Innovation, navachar. Today you can't have outdated processes. देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, drones, AI, ये सब हकीकतें हैं. And along with innovation, deregulation. जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, he said private sector और startups के सिलसिले में, he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure, नियमों का जाल. So CDS DMA is a symbol. पर इसके पीछे गहरा सोच है.
1: सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी, आप कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ गई थी, तो इन टाइम इट वाज टेकन जो डिसीजन.
0: इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप. इट इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री. सो देयर आर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हियर. दूसरा जो केंद्र बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस. देखिए हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था, इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ वॉर,

0: उसमें अमूल परिवर्तन हुआ है। सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ, इट इज सच अ पावरफुल मिलिट्री, देयर इज नो मिलिट्री विच कैन प्रोजेक्ट पार टू ओशंस अवे। बट अभी एक रिपोर्ट निकली है वॉशिंगटन से कि वाई द यूएस हैज नॉट डिलीवर्ड इन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी में उसका काम इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज इट वॉज स्लो टू लर्न द लेसन्स ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन से जो सीख थी ड्रोन्स AI वो नहीं कर पाए। तो देयर यूएस नेवी, उसने ईरानियन नेवी के 160 ships को ध्वस्त कर दिया, बट इट वॉज नॉट स्मॉल इनफ, एजाइल इनफ, ऑटोनमस इनफ टू ऑपरेट इन द स्ट्रेट।
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
0: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है, यू नीड द इनोवेशन एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन प्रोसेस प्रोसीजर, HAL इज प्रॉमिसिंग यू AMCA ओनली बाय 2030। अंग्रेजी में एक कहावत है दैट टुडे क्या हो रहा है दैट multi-billion dollar capacities which are delivered in 10 years they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks। Ukraine mein ye ho raha, so this is the reason why we have to move towards private sector and startups। Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke sath to meri wo jo kya kehte hain professional career vyavsayik jo zindagi hai uska ant ho jata। They are not supposed to interact। Aaj aap dekhiye जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल स्वामीनाथन, वो सार्वजनिक मंच से ही वाज टेलिंग द सीईओ स्टार्टअप्स यंगस्टर कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस। इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम AI गैलेक्साई मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी पनियन टर्बोफैन इंजन थर्ड आई टेक न्यू स्पेस दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स।
1: रिलायंस को जो बढ़ावा मिला है,
0: हवा मिला है स्टार्टअप से, ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप। रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द फिफ्थ जनरेशन फाइटर बट द सिक्स्थ जनरेशन फाइटर, तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते आज हैं, really।
0: जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, उसमें 42 ships का निर्माण हो रहा है वॉरशिप्स, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज चाइना हैज गॉट 500 ships। बट ये दो तीन चीजें जो हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है, स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ। और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं,
1: जी बिल्कुल,
0: हमारी जो सामरिक सोच है जो नीति है उसमें भी देखिए नए स्तंभ। आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ है, और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे। एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज, वी हैव डन इट। हमने कैसे किया, चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा। आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया। जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए। फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमने कहा POK नहीं, POK बाहर बालाकोट में आपको जाके मारा, और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर दिया। आप 10 मई 2025 का स्मरण करें, पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड, इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड। हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट, हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे। पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूर खान 1.5 किलोमीटर था GHQ से। पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड। Look at the message that we have given.
1: So, Mr. Nathaniel, coming to you, आप क्या कहेंगे, ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए, और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज़्यादातर। वहाँ पे जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ, दूसरे इलाकों में। तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहाँ पे, खासकर अबुजमांड एरिया में। वहाँ पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था। और वापसी में जब

0: पाते थे तो काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करे। उससे क्या था कि काफी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह खत्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमने ये खत्म करना ही है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और सीएपीएफ के, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, टीआरपीएफ, सीएएसएफ, आईटीबीपी ये सब उसमें आते हैं, एसएसबी भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने खत्म करना। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं, जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे, और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आने शुरू हो गए और उनको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए, एंड रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, सीआरपीएफ के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू हुए, जिसको हम एफओबी बोलते हैं। उन एफओबी में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं, और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहाँ जम गए सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज़्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है नक्सलाइट्स को ही पता है।
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहाँ पर पहुँच बनी
0: बिल्कुल जी। तो फोर्सेस जब वहाँ जम गए तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट्स से, तो उस भय को दूर कर दिया गया, और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है
1: जी।
0: और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया, और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअल्टीज होने लग गए, और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेगुटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था, और उसमें सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय खुद भी थे, और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफी कठिन इलाका था, और कोबरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशन ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया, और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया, और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
1: जी।
0: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ, और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया, तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा,
1: तो रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो उसके वजह से कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से, और उसमें ये भी था कि जब इनके आपस में शादियां भी होती हैं नक्सलाइट्स जंगलों में रहते हैं, लेकिन दे के नॉट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता था, लेकिन हर आदमी चाहता है भाई मेरे बच्चे

0: एचआईवी हूँ और आगे मेरा संतान बढ़े, तो उसके वजह से कईयों ने सरेंडर किया, तो उनका रिवर्स किया गया स्टेरिलाइजेशन और मकान दिए गए, फैमिली ढंग से रहने लग गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया, स्किल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उनको काम भी दिया गया। और कई जो उनमें बड़े अच्छे थे उनको, जो कि ट्रेंड आदमी थे, उनको स्टेट पुलिस में भी लिया गया। वहाँ पर बस्तर बटालियन है और छत्तीसगढ़ का अपना CAF है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, उसके अलावा जैसे मैं बताया DRG भी है, जो अच्छे ट्रेंड थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी, उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थ और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG है। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
0: अब बसत भी जाने लगे, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और CRPF एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इधर कोई तकलीफ है CRPF में पहुंच जाएंगे, वहाँ से खबर पहुंच जाएगी DM तक, कहीं पे भी पहुंचाना खबर। तो अब वो इंटरेक्शन, क्योंकि CRPF पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन CRPF से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है
1: जी।
0: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं IG झारखंड था तो मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली, और कई ऑपरेशन, एक सरेंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहाँ पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुँचा रहे थे, ताकि और उस सरेंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया। नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती, लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, एक दो कैजुअल्टीज हुए लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ता है नाइट विजन डिवाइसेस, तो इन चीजों से काफी फायदा। हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन ये काफी तादाद में जब वहाँ यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या MSMEs या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए, जैसे मैंने आपको बताया HAL की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट HAL स्मार्टन्स अप, सो दैट RPSUs आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कंपीट करने की काबिलियत रखती है। सो वी नीड डोमेस्टिक कंपटीशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देखें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के लिए, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज AI इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन, ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाई अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए और रिफॉर्म्स की

0: देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामर लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग वॉट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर वी नीड मोर रिफॉर्म। देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल। मैं आपको बताऊं कैसे। हम जब बाहर जाते थे 2005-6 में, तो लोग कहते थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते थे साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे इफ द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores। अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है,
1: और 80 देशों में जा रहा है।
0: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। 145 फर्म्स हैं, एमएसएमईज वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस। आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग। और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो जियो पोलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है। इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे के चीन को भेजा है। सो एक्सपोर्ट्स आर अ जियो पोलिटिकल लीवर, दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे मेक सो मच सेंस, एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया वेर वी हैव, इन फैक्ट we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
1: In fact, जो positive indigenization lists आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक items हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक earmark करते हैं कि ये products यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो आप दिखाई भी दे रहे हैं एक्सपोर्ट।
0: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था। देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊँ हकीकतन हो क्या रहा था। मान लीजिए टैंक है, भाई हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे, हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था। तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य ये था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे, और एमएसएमईज बना सकते हैं। आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं। तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे, पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिए। सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने DPI नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी, तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट। तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट पे खर्च था वो कम हुआ, एंड नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर वी परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट।
2: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़े,
0: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए बुनियादी सवाल क्या था IG साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेज डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेज डेवलपमेंट, रॉन्ग, इट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, साथ चलना है। So, जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी। We have turned it around. We grew up in silos. Government, private sector, PSUs, private sector, academia, अपनी दुनिया में। अरे भाई academia में आप invest नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, pure sciences नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आई नहीं सकती। Everybody has to integrate. So there is a larger conceptual change also which is driving all these, I would say, mega reforms.
1: So, ये जो conceptual change की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और reflection FTI, जो defence में FTI को liberalize किया गया है 74% तक via automatic route and 100% via government. तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक important reform है?
0: बिल्कुल, तो आप एक छोटी सी कहानी सुने। I was growing up 1980s, आपको भी याद होगा, space is an exquisite thing, few countries to it.

0: countries, I'm emphasizing. So USSR, USA, India was also. But hum whispers mein baat kar. Hamare silsile mein kya hua tha? That national security, only government can do it. Only DRDO because it is exalted, lofty. Aur us daire ke andar kya hua? Ki in this PSU complex, a lot of, shall I say, slots slipped in, inefficiencies. Aur usko protect karne ke liye humne kaha nahi, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता. धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पे प्राइवेट सेक्टर प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन. तो एफडीआई में भी यही था पहले. और इसको हमने पहले कैसे कहा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता. हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, द प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए. सो उस तरह से ये जो एफडीआई धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, पीएसयू स्ट्रक्चर में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. देखिए हमको पीएसयूज या से कोई गिला नहीं है. ऑल दैट वी आर सेइंग, आप पीएसयू हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड. एंड इफ यू लुक एट द फ्यूचर, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी. यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन. सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा. दे हैव टू बिकम AI कंपनीज बिकॉज़ द डिलीवरी इज डिजिटल.
1: स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी. जिस तरह की आप बात करें कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए, उस दिशा में
0: बिल्कुल मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स बिकॉज़ दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक. यू नो ये जो चीजें आजकल, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है, ये सब पता नहीं क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ. एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज लाइक द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, सिविल स्पेस में भी है. आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया. मैंने आपको इनाम गिनाए थे, दीज आर जस्ट IT इंजीनियर्स. किसी ने गैराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, बट दे हैव डिलीवर्ड. एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस, इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है. सो I'll go back toward the Prime Minister. I think it was very important. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी.
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में. मिस्टर थेटेल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए.
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट. और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के, जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहाँ पहुँच गए हैं. उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुँच गए हैं. सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दोथ एरिया. अब वहाँ पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है, हालांकि कुछ हैं. एक तो उल्फा है आसाम में, जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है वो, ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता. लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी, और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था, और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे.
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए. और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है